ना उसमें दे मेरे तो की बस बस नेटवर्किंग भी गिरे को की हो की हो मतो कुन जे जल्द जल्द दाजू ते देखाउँदै यहाँ म वहाँ कन्टेन्ट राखेको छु अब यहाँ देखाउँदै देखाउँदैन दाजू

ना उसमें दे मेरे तो की बस बस नेटवर्किंग बिक्री को की हो की हो मतलब कुन जल्द जल्द दाजू तो देखा यहाँ वहाँ कंटेन्ट राखे अब यहाँ देखा दाजू

ना उसमें दे मेरे तो की बस बस नेटवर्किंग भी गिरे को की हो की हो मतो कुन जे जल्द जल्द दाजु ते देखाउँदै यहाँ म वहाँ कन्टेन्ट राखेको छु अब यहाँ देखाउँदै देखाउँदैन दाजु